0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधीक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज भाग 4, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की चर्चा करता है। आज हम भाग 4 का समापन करते हुए दस्तावेज के 5वें और अंतिम भाग, अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ की शुरुआत करेंगे। श्रोताओं, 2021 से 2024 की धर्म सभा के अति विशेष फलों में हम एकतावर्धक उत्साह को पाते हैं। एक माध्यम की खोज जिसके द्वारा प्राथमिकता का क्रियान्वयन किया जा सके, यद्यपि यह एक खुली परिस्थिति है। यह सिनोडल कलिसिया और ख्रिस्तीय एकता दोनों के लिए एक मूलभूत चुनौती बनती है। धर्म सभा एकता को बढ़ावा देने हेतु परम धर्म पीठ के वर्तमान प्रकाशन रोम के धर्माध्यक्ष एकतावर्धक एकता और विश्व पत्र उत उनुम सिंथ के प्रत्युत्तर का स्वागत करता है, जो आगे शोध हेतु मार्गों को प्रशस्त करता है। इस दस्तावेज में इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि ख्रिस्तीय एकता का प्रचार करना रोम के धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई का एक मुख्य कार्य है और एकतावर्धक वार्ता की यात्रा में इस संबंध में एक गहरी समझ को पोषित किया है। इसमें प्रथम वैटिकन महासभा की प्राथमिकता पर बनी कट्टर परिभाषाओं को फिर से पढ़ने या उन पर आधिकारिक टिप्पणी करने के बारे में ठोस प्रस्ताव है। संत पापा की अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट अंतर, कलिसिया के अंदर और दुनिया के साथ उसके रिश्ते में सिनोडालिटी को बढ़ावा देना और कलिसियाओं की एकता आधारित एकता के आदर्श की तलाश करना शामिल है, जो एकतावर्धक वार्ता के लिए अच्छी संभावनाएं उत्पन्न करती है। धर्म सभा इस बात की आशा करती है कि यह दस्तावेज दूसरे ख्रिस्तियों से विचार मंथन करने हेतु एक आधार बनेगा, एक साथ मिलकर निश्चित रूप में, जिसे हम रोम के धर्माध्यक्ष की एकता हेतु प्रेरिताई स्वरूप पाते हैं, जो उसे प्रेम की सेवा बनाती है, जो सबों के द्वारा पहचानी जाती है। श्रोताओं, दूसरी कलिसियाओं और ख्रिस्तीय समुदायों से भ्रातृत्व में प्रतिनिधियों की धर्म सभा में समृद्ध भागीदारी इस बात के लिए निमंत्रण देती है कि हम अपने एकतावर्धक प्रतिभागियों दोनों पूर्वी और पश्चिमी सिनोडल प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें। एकतावर्धक वार्ता हमारे लिए सिनोडालिटी और कलिसिया की एकता की समझ को विकसित करने हेतु एक अति महत्वपूर्ण बात है। यह हमसे एकतावर्धक सिनोडल अभ्यासों की मांग करती है, जिसमें सलाह मशविरा और विभिन्न जरूरी सवालों पर विचार मंथन करना शामिल है। यह हम सबों से पारस्परिक उत्तरदायित्व लेने हेतु निमंत्रण देती है, जिसके फलस्वरूप हम अपने को उस रूप में पाते हैं जो हम हैं, हम जो करते हैं और जिसकी हम शिक्षा देते हैं। यह हमारी एकता है जो हमारे लिए एक बपतिस्मा में इसे संभव बनाती है, जो हमें एकता का आयाम सहभागिता और प्रेरिताई प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप हम ईश प्रजा के रूप में अपनी पहचान को पाते हैं। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस इस बात को घोषित करते हैं कि सन 2025 जयंती का वर्ष है, जिसमें हम निसिया कलिसिया की प्रथम एकतावर्धक आम सभा की वर्षगांठ मनाएंगे, जो हमारे विश्वास और ख्रिस्तीय एकता को निरूपित करती है। 1700वीं सालगिरह की तैयारी और इसका एक साथ मनाया जाना हमारे लिए एक अवसर होगा, जहां हम अपने विश्वास की गहराई को प्राप्त करेंगे और एक साथ मिलकर ख्रिस्त में अपने विश्वास को प्रकट करेंगे तथा सिनोडालिटी के विभिन्न स्वरूपों को भी परंपराओं के संग साझा करेंगे। यह हमारे लिए पास्का को एक तिथि में मनाने हेतु पहल करने में मदद करेगा, जिससे हम यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान को एक साथ मना सकेंगे। ये सारी चीज़ें सन 2025 में होंगी। यह हमें उन्हें घोषित करने की प्रेरिताई हेतु और अधिक शक्ति प्रदान करेगा, जो सारी दुनिया के लिए जीवन और मुक्ति हैं। श्रोताओं, सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के पांचवें भाग का शीर्षक है, अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ। अपने शिष्यों को प्रेरिताई के लिए तैयार करते हुए यीशु उन्हें और एक बार कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने उनके ऊपर फूंकते हुए कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। श्रोताओं, पुनरुत्थान की संध्या को यीशु अपने शिष्यों को अपना मुक्तिदायी शांति का उपहार प्रदान करते और उन्हें अपनी प्रेरिताई के साझेदार बनाते हैं। उनकी शांति हमारे लिए जीवन की पूर्णता को व्यक्त करती है, ईश्वर के संग, भाई बहनों और सृष्टि के संग एकता को। उनकी प्रेरिताई ईश्वर के राज्य की घोषणा करना है, जो हम में से प्रत्येक को दिया गया है, बिना किसी अपवाद के पिता के प्रेम और करुणा को घोषित करना। जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शब्द हमें इस बात की याद दिलाती है कि ईश्वर ने शुरू में क्या किया, अब अंतिम व्यारी के कमरे में आत्मा की सांस के साथ नई सृष्टि की शुरुआत होती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के एक समूह को हम उत्पन्न होता पाते हैं। श्रोताओं, ईश प्रजा के लोगों को एक उचित प्रशिक्षण की जरूरत है, जिससे वे सुसमाचार की खुशी का साक्ष्य दे सकें और सिनोडालिटी को अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकें। सर्वप्रथम ईश्वर के स्वतंत्र बेटे बेटियों के रूप में यीशु ख्रिस्त का अनुसरण, प्रार्थना में उनके जीवन पर चिंतन और उन्हें उनमें पहचानना जो अपने में गरीब हैं। सिनोडालिटी में हम बुलाहटिए और प्रेरिताई सचेतना, कलिसिया के रिश्तों को जीने के एक नए तरीके और भागीदारी के संदर्भ में कलिसिया के नए आयाम की बातों को समाहित पाते हैं। इसका अर्थ हमारे लिए यह भी है कि हम कलिसिया में आत्म परख का अभ्यास करें और मूल्यांकन की संस्कृति को अपनाएं। ये सारी चीजें अपने से नहीं आती हैं, जब तक हम इसके संदर्भ में अपने को प्रशिक्षण की प्रक्रिया से होकर गुजरने नहीं देते। सिनोडालिटी का प्रशिक्षण और कलिसिया की सिनोडल शैली लोगों में इस बात की सचेतना लाएगी कि बपतिस्मा में मिले उपहार को हमें सभों की भलाई हेतु उपयोग में लाने की जरूरत है। वे अपने में गुप्त या छुपे हुए नहीं रह सकते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम इसकी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जैसे ही संत पापा लियो 14वें का विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमानिटास प्रकाशित हुआ, डरहम यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी प्रोफेसर एना रोलाइंस ने वाटिकन न्यूज को बताया कि इतना दमदार संदेश, जो हमारे AI युग के फायदे और नुकसान दोनों को बताता है, कलीसिया और दुनिया पर एक हमेशा रहने वाला छाप छोड़ेगा। संत पापा लियो द्वारा हस्ताक्षरित इस दस्तावेज का अनावरण 25 मई को वाटिकन के न्यू सिनड हॉल में स्वयं पापा की उपस्थिति में किया गया। संत पापा लियो, यह संत पापा लियो 13वें के ऐतिहासिक विश्व पत्र रेरुम नोवारुम की 135वीं वर्षगांठ पर हुआ। कार्यक्रम के बाद वाटिकन न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर रोलाइंस ने इस विश्व पत्र को दो खास वजहों से बहुत जरूरी योगदान बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा, विश्व पत्र में बताए गए टेक्नोलॉजिकल मुद्दों को लेकर इंसानियत बहुत जरूरी समय का सामना कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन मुद्दों के बारे में सोचना शुरू करने के लिए कोई कल नहीं है, क्योंकि काम करने का स्थान, श्रम, प्रवासन, परिवारों, राजनीतिक संगठनों और दुनिया भर के झगड़ों पर इनका असर अभी है, कल भी था और कल भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने माना कि बहुत से लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सवालों पर बात करने में संदेहजनक या खुद को काबिल नहीं समझते, और संत पापा विश्व पत्र में यह कहते हैं कि शायद कोई और इन चीजों के बारे में सोचेगा, लेकिन हमें इनके बारे में सोचना होगा और हमें इनके बारे में मिलकर सोचना होगा। धर्मशास्त्री ने सुझाव दिया कि मैग्निफिका ह्यूमानिटास की मुख्य चिंताओं में से एक यह निश्चित करना है कि ये सवाल सिर्फ निजी जगहों पर न छोड़े जाएं, जो इंसानी गरिमा के बजाय मुख्य रूप से मुनाफे से बनी हो। उन्होंने कहा कि विश्व पत्र इस बात को जोर देता है कि आम भलाई को बढ़ावा देने के मकसद से होने वाली किसी भी बातचीत में उन आवाजों को केंद्र में होना चाहिए। प्रोफेसर रोलाइंस ने इंसानियत के बारे में गहरे नैतिक और आध्यात्मिक सवाल उठाने में विश्व मंच पर संत पापा की अनोखी आवाज पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संत पापा समाज को बुनियादी सवालों पर सोचने की चुनौती देते हैं। हम मानव जीवन को क्या समझते हैं? हम इंसान के तौर पर कौन हैं? हम अपनी इंसानियत और अपनी जिंदगी में किस मनोभाव और लक्ष्य को पाना चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा, वे झूठी कहानियों, इंसान होने के मतलब के बारे में झूठी बातों की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं, खासकर जो दूसरों पर ताकत या दबदबा रखती है, चाहे वह राजनीति हो, युद्ध हो, लड़ाई हो या अर्थव्यवस्था हो। उन बातों के विपरीत संत पापा लियो ने जो कहा, उसे उन्होंने प्यार की सभ्यता का बहुत सुंदर नजरिया बताया। हमें मिलकर प्यार की उस सभ्यता को बनाने की जरूरत है, और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम इस भावना के साथ जिएं कि हम प्यार करने के लिए बनाए गए और सीमित जीव हैं, न्याय की चाहत रखते हैं और हम सब मिलकर उस दुनिया को बनाते हैं। उधर पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफूर में चांद सीमा के पास अल्टीना शहर में तीव्र समर्थन बल RSF के हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए हैं। मिलिट्री सूत्रों के मुताबिक एक ड्रोन शहर के ऊपर उड़ा और उसने 4 मिसाइलें दागी, जिनमें से एक बाजार के रेस्टोरेंट में गिरा, जिससे आम लोगों की मौत हो गई। कुछ घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें खास देखभाल की जरूरत है। अप्रैल 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद से इस लड़ाई में कथित तौर पर लगभग 4,00,000 मौतें हुई हैं, जो दुनिया का सबसे बुरा मानवीय संकट बना हुआ है। उधर प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में एबोला महामारी लगातार फैल रही है। कांगो के स्वास्थ्य संस्थान के नवीनतम डेटा के अनुसार संदिग्ध मामलों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है, जिनमें 101 की लैब से पुष्टि हो चुकी है और कम से कम 119 संदिग्ध मौतें हुई हैं। इस वायरस के फैलने की गलत जानकारी और असुरक्षा की भावना और भी बढ़ गई है, जिसने सालों से इस पूर्वी अफ्रीकी देश को परेशान किया है। एक सर्वे के अनुसार प्रभावित इलाकों में साक्षात्कार किए गए लोगों में से 34% ही इबोला फैलने के तरीकों को सही ढंग से पहचान पाए हैं।
आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस बीमारी को आध्यात्मिक कारणों से जुड़ी घटना या पैसे जुटाने के लिए बनाई गई एक योजना मानता है। उधर यूक्रेनी नागरिकों के लिए एकमात्र सक्रिय मानवीय कॉरिडोर मोक्रानी डोमानो बॉर्डर क्रॉसिंग है, जहां कारितास यूक्रेन ने दूसरे संगठनों के साथ मिलकर एक साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की है। जिस तरह से यूक्रेन के लोग रूसी संघ के कब्जे वाले इलाकों को छोड़कर कीव सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में पहुंचते हैं, उनमें एक कड़वी उलझन है। सीधे सीमा पार करने के बजाय उन्हें रूस और बेलारूस से होकर गुजरना पड़ता है। हजारों किलोमीटर का सफर, प्रक्रिया और घंटों की चेकिंग के बाद वे आखिरकार मोक्रानी डोमानोव बॉर्डर क्रॉसिंग पहुंचते हैं, जहां यूक्रेनी नागरिकों के लिए एकमात्र मानवतावादी गलियारा अभी चालू है। जब वे आखिरकार यूक्रेन पहुंचते हैं तो वे थके हुए, कमजोर और सहारे की जरूरत महसूस करते हैं। यूक्रेन में 66% आबादी कलीसिया पर भरोसा करती है। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि समय के साथ यह रिश्ता क्यों और कैसे बना। उनकी मदद करने वाले मानवीय संगठनों में से एक कारितास यूक्रेन है, जो फरवरी 2025 से जमीन पर सक्रिय है। कारितास यूक्रेन के उपाध्यक्ष शेलेस्चुक बताते हैं, हमारा काम लोगों को जरूरतों और जिन हालात में वे पहुंचते हैं उनसे शुरू होता है। लोग बॉर्डर पर बिना किसी रास्ते और बिना परिवहन के पहुंचते हैं, इसलिए हमने परिवहन का इंतजाम किया, खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोगों और कम चलने फिरने वाले लोगों के लिए, जिनके पास खुद से चुनौतियों का सामना करने के लिए साधन नहीं है। कब्जे वाले इलाकों में सफर में अक्सर 3, 4 या 5 दिन भी लग जाते हैं, जिनमें कई बार परिवहन बदलना पड़ता है। यह एक लंबी और बहुत थकाने वाली यात्रा है। हमारे लिए लोगों की गरिमा का सम्मान करते हुए उन जरूरतों को पूरा करना जरूरी था, ताकि उन्हें स्वागत और स्वीकृत महसूस हो सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज भाग 4, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की चर्चा करता है। आज हम भाग 4 का समापन करते हुए दस्तावेज के 5वें और अंतिम भाग, अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, की शुरुआत करेंगे। श्रोताओं, 2021 से 2024 की धर्म सभा के अति विशेष फलों में हम एकतावर्धक उत्साह को पाते हैं। एक माध्यम की खोज जिसके द्वारा प्राथमिकता का क्रियान्वयन किया जा सके, यद्यपि यह एक खुली परिस्थिति है। यह सिनोडल कलिसिया और ख्रिस्तीय एकता दोनों के लिए एक मूलभूत चुनौती बनती है। धर्म सभा एकता को बढ़ावा देने हेतु परम धर्म पीठ के वर्तमान प्रकाशन रोम के धर्माध्यक्ष एकतावर्धक एकता और विश्व पत्र उत उनुम सिंत के प्रत्युत्तर का स्वागत करता है, जो आगे शोध हेतु मार्गों को प्रशस्त करता है। इस दस्तावेज में इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि ख्रिस्तीय एकता का प्रचार करना रोम के धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई का एक मुख्य कार्य है और एकतावर्धक वार्ता की यात्रा में इस संबंध में एक गहरी समझ को पोषित किया है। इसमें प्रथम वैटिकन महासभा की प्राथमिकता पर बनी कट्टर परिभाषाओं को फिर से पढ़ने या उन पर आधिकारिक टिप्पणी करने के बारे में ठोस प्रस्ताव है। संत पापा की अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट अंतर, कलिसा के अंदर और दुनिया के साथ उसके रिश्ते में सिनोडालिटी को बढ़ावा देना और कलिसियाओं की एकता आधारित एकता के आदर्श की तलाश करना शामिल है, जो एकतावर्धक वार्ता के लिए अच्छी संभावनाएं उत्पन्न करती है। धर्म सभा इस बात की आशा करती है कि यह दस्तावेज दूसरे ख्रिस्तियों से विचार मंथन करने हेतु एक आधार बनेगा, एक साथ मिलकर निश्चित रूप में, जिसे हम रोम के धर्माध्यक्ष की एकता हेतु प्रेरिताई स्वरूप पाते हैं, जो उसे प्रेम की सेवा बनाती है, जो सभों के द्वारा पहचानी जाती है। श्रोताओं, दूसरी कलिसियाओं और ख्रिस्तीय समुदायों से भ्रातृत्व में प्रतिनिधियों की धर्म सभा में समृद्ध भागीदारी इस बात के लिए निमंत्रण देती है कि हम अपने एकतावर्धक प्रतिभागियों दोनों पूर्वी और पश्चिमी सिनोडल प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें। एकतावर्धक वार्ता हमारे लिए सिनोडालिटी और कलिसिया की एकता की समझ को विकसित करने हेतु एक अति महत्वपूर्ण बात है। यह हमसे एकतावर्धक सिनोडल अभ्यासों की मांग करती है, जिसमें सलाह मशविरा और विभिन्न जरूरी सवालों पर विचार मंथन करना शामिल है। यह हम सबों से पारस्परिक उत्तरदायित्व लेने हेतु निमंत्रण देती है, जिसके फलस्वरूप हम अपने को उस रूप में पाते हैं जो हम हैं, हम जो करते हैं और जिसकी हम शिक्षा देते हैं। यह हमारी एकता है जो हमारे लिए एक बपतिस्मा में इसे संभव

बनाती है जो हमें एकता का आयाम, सहभागिता और प्रेरिताई प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप हम ईश प्रजा के रूप में अपनी पहचान को पाते हैं। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस इस बात को घोषित करते हैं कि सन 2025 जयंती का वर्ष है, जिसमें हम निसिया कलिसिया की प्रथम एकता वर्धक आम सभा की वर्षगांठ मनाएंगे, जो हमारे विश्वास और ख्रिस्तीय एकता को निरूपित करती है। 1700वीं सालगिरह की तैयारी और इसका एक साथ मनाया जाना हमारे लिए एक अवसर होगा, जहां हम अपने विश्वास की गहराई को प्राप्त करेंगे और एक साथ मिलकर ख्रिस्त में अपने विश्वास को प्रकट करेंगे तथा सिनोडालिटी के विभिन्न स्वरूपों को भी परंपराओं के संग साझा करेंगे। यह हमारे लिए पास्का को एक तिथि में मनाने हेतु पहल करने में मदद करेगा, जिससे हम यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान को एक साथ मना सकेंगे। ये सारी चीजें सन 2025 में होंगी। यह हमें उन्हें घोषित करने की प्रेरिताई हेतु और अधिक शक्ति प्रदान करेगा, जो सारी दुनिया के लिए जीवन और मुक्ति हैं। श्रोताओं, सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के पांचवें भाग का शीर्षक है, अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ। अपने शिष्यों को प्रेरिताई के लिए तैयार करते हुए यीशु उन्हें और एक बार कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने उनके ऊपर फूंकते हुए कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। श्रोताओं, पुनरुत्थान की संध्या को यीशु अपने शिष्यों को अपना मुक्तिदायी शांति का उपहार प्रदान करती और उन्हें अपनी प्रेरिताई के साझेदार बनाते हैं। उनकी शांति हमारे लिए जीवन की पूर्णता को व्यक्त करती है, ईश्वर के संग, भाई बहनों और सृष्टि के संग एकता को। उनकी प्रेरिताई ईश्वर के राज्य की घोषणा करना है, जो हम में से प्रत्येक को दिया गया है, बिना किसी अपवाद के पिता के प्रेम और करुणा को घोषित करना। जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शब्द हमें इस बात की याद दिलाती है कि ईश्वर ने शुरू में क्या किया। अब अंतिम व्यारी के कमरे में आत्मा की सांस के साथ नई सृष्टि की शुरुआत होती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के एक समूह को हम उत्पन्न होता पाते हैं। श्रोताओं, ईश प्रजा के लोगों को एक उचित प्रशिक्षण की जरूरत है, जिससे वे सुसमाचार की खुशी का साक्ष्य दे सकें और सिनोडालिटी को अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकें। सर्वप्रथम ईश्वर के स्वतंत्र बेटे बेटियों के रूप में यीशु ख्रिस्त का अनुसरण, प्रार्थना में उनके जीवन पर चिंतन और उन्हें उनमें पहचानना जो अपने में गरीब हैं। सिनोडालिटी में हम बुलाहटिए और प्रेरिताई सचेतना, कलिसिया के रिश्तों को जीने के एक नए तरीके और भागीदारी के संदर्भ में कलिसिया के नए आयाम की बातों को समाहित पाते हैं। इसका अर्थ हमारे लिए यह भी है कि हम कलिसिया में आत्मपरख का अभ्यास करें और मूल्यांकन की संस्कृति को अपनाएं। ये सारी चीजें अपने से नहीं आती हैं, जब तक हम इसके संदर्भ में अपने को प्रशिक्षण की प्रक्रिया से होकर गुजरने नहीं देते। सिनोडालिटी का प्रशिक्षण और कलिसिया की सिनोडल शैली लोगों में इस बात की सचेतना लाएगी कि बपतिस्मा में मिले उपहार को हमें सभों की भलाई हेतु उपयोग में लाने की जरूरत है। वे अपने में गुप्त या छुपे हुए नहीं रह सकते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माधर्शकों की 16वीं धर्मसभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम इसकी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जैसे ही संत पापा लियो 14वें का विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमानिटास प्रकाशित हुआ, डरहम यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी प्रोफेसर एना रोलाइंस ने वाटिकन न्यूज को बताया कि इतना दमदार संदेश, जो हमारे AI युग के फायदे और नुकसान दोनों को बताता है, कलीसिया और दुनिया पर एक हमेशा रहने वाला छाप छोड़ेगा। संत पापा लियो द्वारा हस्ताक्षरित इस दस्तावेज का अनावरण 25 मई को वाटिकन के न्यू सिनड हॉल में स्वयं पापा की उपस्थिति में किया गया। संत पापा लियो, यह संत पापा लियो 13वें के ऐतिहासिक विश्व पत्र रेरुम नोवारुम की 135वीं वर्षगांठ पर हुआ। कार्यक्रम के बाद वाटिकन न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर रोलाइंस ने इस विश्व पत्र को दो खास वजहों से बहुत जरूरी योगदान बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा, विश्व पत्र में बताए गए टेक्नोलॉजिकल मुद्दों को लेकर इंसानियत बहुत जरूरी समय का सामना कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन मुद्दों के बारे में सोचना शुरू करने के लिए कोई कल नहीं है, क्योंकि काम करने का स्थान, श्रम, प्रवासन, परिवारों, राजनीतिक संगठनों और दुनिया भर के झगड़ों पर इनका असर अभी है, कल भी था और कल भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने माना कि बहुत से लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सवालों पर बात करने में संदेहजनक या खुद को काबिल नहीं समझते, और संत पापा विश्व पत्र में यह कहते हैं कि शायद कोई और इन चीजों के बारे में सोचेगा, लेकिन हमें इनके बारे में सोचना होगा और हमें इनके बारे में मिलकर सोचना होगा। धर्मशास्त्री ने सुझाव दिया कि मैग्निफिका ह्यूमानिटास की मुख्य चिंताओं में से एक यह निश्चित करना है कि ये सवाल सिर्फ निजी जगहों पर न छोड़े जाएं, जो इंसानी गरिमा के बजाय मुख्य रूप से मुनाफे से बनी हो। उन्होंने कहा कि विश्व पत्र इस बात को जोर देता है कि आम भलाई को बढ़ावा देने के मकसद से होने वाली किसी भी बातचीत में उन आवाजों को केंद्र में होना चाहिए। प्रोफेसर रोलाइंस ने इंसानियत के बारे में गहरे नैतिक और आध्यात्मिक सवाल उठाने में विश्व मंच पर संत पापा की अनोखी आवाज पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संत पापा समाज को बुनियादी सवालों पर सोचने की चुनौती देते हैं। हम मानव जीवन को क्या समझते हैं? हम इंसान के तौर पर कौन हैं? हम अपनी इंसानियत और अपनी जिंदगी में किस मनोभाव और लक्ष्य को पाना चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा, वे झूठी कहानियों, इंसान होने के मतलब के बारे में झूठी बातों की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं, खासकर जो दूसरों पर ताकत या दबदबा रखती है, चाहे वह राजनीति हो, युद्ध हो, लड़ाई हो या अर्थव्यवस्था हो। उन बातों के विपरीत संत पापा लियो ने जो कहा, उसे उन्होंने प्यार की सभ्यता का बहुत सुंदर नजरिया बताया। हमें मिलकर प्यार की उस सभ्यता को बनाने की जरूरत है।

और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम इस भावना के साथ जिएं कि हम प्यार करने के लिए बनाए गए और सीमित जीव हैं, न्याय की चाहत रखते हैं और हम सब मिलकर उस दुनिया को बनाते हैं। उधर पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफूर में चांड सीमा के पास अल्टीना शहर में तीव्र समर्थन बल RSF के हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए हैं। मिलिट्री सूत्रों के मुताबिक एक ड्रोन शहर के ऊपर उड़ा और उसने 4 मिसाइलें दागी, जिनमें से एक बाजार के रेस्टोरेंट में गिरा, जिससे आम लोगों की मौत हो गई। कुछ घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें खास देखभाल की जरूरत है। अप्रैल 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद से इस लड़ाई में कथित तौर पर लगभग 4 लाख मौतें हुई हैं, जो दुनिया का सबसे बुरा मानवीय संकट बना हुआ है। उधर प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में एबोला महामारी लगातार फैल रही है। कांगो के स्वास्थ्य संस्थान के नवीनतम डेटा के अनुसार संदिग्ध मामलों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है, जिनमें 101 की लैब से पुष्टि हो चुकी है और कम से कम 119 संदिग्ध मौतें हुई हैं। इस वायरस के फैलने की गलत जानकारी और असुरक्षा की भावना और भी बढ़ गई है, जिसने सालों से इस पूर्वी अफ्रीकी देश को परेशान किया है। एक सर्वे के अनुसार प्रभावित इलाकों में साक्षात्कार किए गए लोगों में से 34% ही इबोला फैलने के तरीकों को सही ढंग से पहचान पाए हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस बीमारी को आध्यात्मिक कारणों से जुड़ी घटना या पैसे जुटाने के लिए बनाई गई एक योजना मानता है। उधर यूक्रेनी नागरिकों के लिए एकमात्र सक्रिय मानवीय कॉरिडोर मोक्रानी डोमानो बॉर्डर क्रॉसिंग है, जहां कारितास यूक्रेन ने दूसरे संगठनों के साथ मिलकर 1 साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की है। जिस तरह से यूक्रेन के लोग रूसी संघ के कब्जे वाले इलाकों को छोड़कर कीव सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में पहुंचते हैं, उनमें एक कड़वी उलझन है। सीधे सीमा पार करने के बजाय उन्हें रूस और बेलारूस से होकर गुजरना पड़ता है। हजारों किलोमीटर का सफर, प्रक्रिया और घंटों की चेकिंग के बाद वे आखिरकार मोक्रानी डोमानोव बॉर्डर क्रॉसिंग पहुंचते हैं, जहां यूक्रेनी नागरिकों के लिए एकमात्र मानवतावादी गलियारा अभी चालू है। जब वे आखिरकार यूक्रेन पहुंचते हैं तो वे थके हुए, कमजोर और सहारे की जरूरत महसूस करते हैं। यूक्रेन में 66% आबादी कलीसिया पर भरोसा करती है। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि समय के साथ यह रिश्ता क्यों और कैसे बना। उनकी मदद करने वाले मानवीय संगठनों में से एक कारितास यूक्रेन है, जो फरवरी 2025 से जमीन पर सक्रिय है। कारितास यूक्रेन के उपाध्यक्ष शेलेस्चुक बताते हैं, हमारा काम लोगों को जरूरतों और जिन हालात में वे पहुंचते हैं उनसे शुरू होता है। लोग बॉर्डर पर बिना किसी रास्ते और बिना परिवहन के पहुंचते हैं, इसलिए हमने परिवहन का इंतजाम किया, खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोगों और कम चलने फिरने वाले लोगों के लिए, जिनके पास खुद से चुनौतियों का सामना करने के लिए साधन नहीं है। कब्जे वाले इलाकों में सफर में अक्सर 3, 4 या 5 दिन भी लग जाते हैं, जिनमें कई बार परिवहन बदलना पड़ता है। यह एक लंबी और बहुत थकाने वाली यात्रा है। हमारे लिए लोगों की गरिमा का सम्मान करते हुए उन जरूरतों को पूरा करना जरूरी था, ताकि उन्हें स्वागत और स्वीकृत महसूस हो सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और

0: आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी।

0: लेकर
1: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
0: हम पर दया कर।
1: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
0: हम पर दया कर।
1: पवित्र आत्मा ईश्वर,
0: हम पर दया कर।
1: संत मरियम,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: ईश्वर की पवित्र माँ,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: ख्रिस्त की माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: ईश्वरीय कृपा की माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: अति निर्मल माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: अति शुद्ध माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: कुमारी माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: निष्कलंक माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: प्रिय माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: प्रशंसनीय माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: सुसमति की माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: सृष्टिकर्ता की माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: मुक्तिदाता की माता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: अति चौकस कुमारी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आदरणीय कुमारी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्तुति योग्य कुमारी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शक्तिमती कुमारी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: दयालु कुमारी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: धर्मनिष्ठ कुमारी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हमारे आनंद का मूल,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: पवित्र आत्मा का मंदिर,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आदरणीय पात्र,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: भक्ति का उत्तम पात्र,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आध्यात्मिक गुलाब,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: दाऊद का गढ़,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हस्तिदंत का गढ़,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्वर्ण मंदिर,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: संधि की मंजूषा,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: भोर का तारा,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: रोगियों का स्वास्थ्य,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: पापियों की शरण,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: दुखियों का दिलासा,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: ख्रिस्तियों की सहायता,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्वर्गदूतों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: धर्म पुरखों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: नबियों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: प्रेरितों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शहीदों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: धर्मवीरों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: संतों की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: अति पवित्र माला की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शांति की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमें क्षमा कर।
1: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमारी सुन।
1: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
0: हम पर दया कर।
1: हम प्रार्थना करें।
0: हे प्रभु ईश्वर।

और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। विश्व पत्र मीडिएटर देई में आराध्य संत पापा पियूस 12वें लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि कलीसिया एक जीवित इकाई है और इस सजीव इकाई स्वरूप पवित्र धर्म विधि के संदर्भ में भी वह विकसित होती, प्रौढ़ता को प्राप्त करती, प्रगति करते हुए समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेती है, बशर्ते धर्म विधि के धर्म सिद्धांत की देखरेख की जाती हो। इस सिद्धांत के पूर्ण अनुपालन में द्वितीय वैटिकन महासभा धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम के परिचय में इस बात का उल्लेख किया गया है, धर्म विधि में सुधार और उसे बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर ठोस कारणों का पहचान किया जाता है। वास्तव में धर्म सभा के अभियोजन का उद्देश्य विश्वासियों को ख्रिस्तीय जीवन जीने हेतु एक उत्साह प्रदान करना है, समय की मांग के अनुरूप संस्थानों में परिवर्तन पर ध्यान देना, उन बातों को बढ़ावा देना जो ख्रिस्तीय विश्वासियों में एकता की भावना को प्रोत्साहित करती हो तथा सारी मानव जाति को कलीसिया में संग्रहित करने वाली बातों को मजबूती प्रदान करना है। संत पापा लियो ने कहा कि इतिहास के उन क्षणों में धर्म विधि के क्रियाकलापों में नवीनीकरण लाने हेतु एक गहरी आवश्यकता की अनुभूति हुई, जिसके द्वारा सदियों तक कलीसिया ने ईश्वर की महिमा और ख्रिस्तियों के पवित्रीकरण हेतु कार्य किया। हम धर्म विधि के संबंध में हुए आंदोलनों के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिनके द्वारा विश्वास में सुदृढ़ता आई, जिनके संबंध में संत पापा द्वितीय ने बाद में कहा कि धर्म विधि और कलीसियाई जीवन के नवीनीकरण के बीच एक अति घनिष्ठ और मूलभूत संबंध है। कलीसिया पूजन विधि में न केवल कार्य करती है बल्कि उसके द्वारा खुद को भी प्रकट करती है। वह पूजन विधि के द्वारा जीवित रहती और अपने जीवन के लिए शक्ति हासिल करती है। संत पापा लियो ने कहा कि विश्वासियों को धर्म विधि में मिलने वाले समृद्ध कृपा दानों की ओर अभिमुख करने हेतु धर्म सिद्धांत साक्रो कॉन्सिलियम एक प्रभावकारी वाक्यांश कहता है,
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: अच्छी परंपरा को बनाए रखा जाए यद्यपि उसमें संवैधानिक विकास का मार्ग खुला रहे। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इस घोषणा में निहित उद्देश्य को समझा जो धर्म सभा के आचार्यों में नवीनता हेतु कार्यक्रम को व्यक्त करता है। परंपरा से चली आ रही वृहद धर्म विधि और भविष्य की धर्म विधि के मध्य एक संतुलन इस बात का ध्यान रखते हुए कि परंपरा और प्रगति बहुधा बेढंगे रूप में विरोधात्मक होते हैं, जबकि वास्तव में दो तथ्यों का मिलन होता है। परंपरा अपने में एक सजीव सच्चाई है जो अपने में विकास के सिद्धांत को वहन करती है। यह मानो यह कहने की भांति है कि परंपरा की नदी स्वयं में स्रोत को वहन करती और अपने में बाहर की ओर बहती है। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सभा इस प्रगति की वैधता को सुदृढ़ता प्रदान करती है जो वास्तविक परंपरा में जुड़ी हुई है। पूजन विधि में ईश्वर द्वारा स्थापित अपरिवर्तनीय तत्वों और परिवर्तनशील तत्वों में अंतर करते हुए जो समय के साथ न केवल बदले जा सकते हैं बल्कि बदले भी जाने चाहिए, अगर उनमें किसी ऐसी चीज का प्रवेश हो गया है जो पूजन विधि के अंदरूनी स्वभाव से मेल नहीं खाती या उसके लिए अनुपयुक्त हो गई है। इस तरह के परिवर्तनों को सदियों में निरंतर देखा गया है जिनके द्वारा विश्वासियों की सहभागिता धार्मिक क्रियाकलापों में ख्रीस्त के पास का रहस्य में फलदायक बन सके, जो ख्रीस्तीय विश्वास का मूलभूत आधार है। कलीसिया की आराधना इस भांति हर युग के सांस्कृतिक स्वरूपों को अपने में वहन करती है और उन्हें प्रभावित करते हुए उन्हें परिवर्तित भी करती है। इस तरह धर्मविधि सदियों से हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करने का एक साधन बनता है। आज हमारे लिए इस शक्ति को वर्तमान सच्चाई और सजीव कैथोलिक परंपरा के अनुरूप नवीन बनाने की जरूरत है, अर्थात इस आयाम के संग जो विश्वासियों को पूर्ण सत्य की खोज हेतु प्रेरित करता है। संत पापा ने कहा, अतः हम इस बात को समझते हैं कि क्यों धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के पुनरालोकन की बात कही, जब सच्ची कलीसिया की भलाई हेतु उसकी जरूरत निश्चित रूप में होती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनाया गया कोई भी नया रूप किसी न किसी तरह से पहले से मौजूद रूपों में स्वाभाविक रूप से विकसित होती हो। संपूर्ण कलीसिया की भलाई हेतु हर नवनीकरण को चाहिए कि वह सदैव सावधानी पूर्वक ईश शास्त्रीय इतिहास और प्रेरिताई की खोज करे। धर्म सभा का धर्म सिद्धांत इस भांति हमें विश्वासियों के बीच भ्रम को दूर करने की बात कहता है। यह हर किसी को सम्माहित करने हेतु प्रोत्साहित नहीं करता, धर्म विधि के संबंध में उन बातों को हटाने या बदलने की बात कहता है जो व्यक्तिगत पहल से शुरू की गई है। धर्म सिद्धांत में प्रगति कलीसिया की एकता से कोई समझौता नहीं करना है बल्कि यह उसे सुदृढ़ करने और उसे बढ़ावा देने की कोशिश करना है। संत पापा ने कहा,
2: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli
1: अतः मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ जो दिव्य रहस्य का समारोह मनाने की तैयारी करते हैं, विशेषकर पुरोहितों के लिए जो धर्म विधि की अगुवाई करते हैं। पूजन विधि के पाठ और नियमों के प्रति हमेशा सम्मान को बनाए रखें जो आंतरिक खुलेपन और ईश्वर पर भरोसा से उत्पन्न होते हैं, जिनमें हम ईश्वर की महानता के सामने विनम्रता और कलीसिया के प्रति सच्ची निष्ठा को व्यक्त करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित यात्रा से दो हफ्ते से भी कम समय पहले आज बुधवार आम दर्शन समारोह से पहले संत पापा ने वाटिकन में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेजोन से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन और वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघर से भी मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार वाटिकन सचिवालय में हुई बातचीत में संत पापा की आने वाली यात्रा पर खुशी जताई गई और इसे परम धर्म पीठ और स्पेन के बीच अच्छे रिश्तों की निशानी बताया गया। और बुधवार आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेन पर रूस के हाल के हमलों के बाद शांति की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती, इससे वे और बिगड़ जाती हैं, क्योंकि जहां भी मिसाइलें और ड्रोन गिरते हैं वहां उम्मीद भी टूट जाती है, घर और पूजा के स्थान तबाह हो जाते हैं और बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। संत पापा ने युद्ध में घायल सभी लोगों को शांति की रानी कुंवारी मां मरियम की सुरक्षा में सौंप दिया। इसके बाद संत पापा ने अरबी और फ्रेंच बोलने वाले श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए लेबनानी तीर्थयात्रियों को भी खास शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारी माँ मरिया हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे लिए प्रार्थना करती हैं और माँ के प्यार से देखभाल करती हैं। संत पापा ने कहा, प्रभु आपको आशीर्वाद दें और हमेशा हर बुराई से बचाएं। सभी माताओं को धन्यवाद अपने बच्चों को ईश्वर से प्यार करना सिखाने के लिए। अंत में पोलिश तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने माताओं को धन्यवाद दिया और उन्होंने याद किया कि पोलैंड ने कल माताओं का दिवस मनाया था। उन्होंने कहा, मैं उन सभी माताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उदारता से अपने बच्चों को जीवन और देखभाल का तोहफा दिया है, उन्हें ईश्वर और अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाया है। संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर की मां मरियम उनके लिए बीच बचाव करें ताकि उन्हें यीशु के साथ एक स्थायी बंधन की कृपा मिल सके। संत पापा ने पोलैंड के लोगों से अपने देश में गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया। और मंगलवार शाम को कास्टेल गंडोल्फो के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए अपनी अपील दोहराई। युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी जो इंसानी जिंदगी की परवाह नहीं करता और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के साथ चल रही बातचीत पर जोर दिया। गाजा जाने वाले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिल्ला में शामिल कार्यकर्ताओं के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए जिनमें से कुछ को हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधने की खबरें थी, संत पापा ने कहा कि हमें हर व्यक्ति के मानव अधिकार के सम्मान के लिए अपनी अपील फिर से दोहरानी चाहिए। संत पापा ने गाजा में आम लोगों की लगातार तकलीफ पर दुख जताया और कहा, दुर्भाग्य से गाजा के लोगों को अभी भी मानवीय मदद नहीं मिल रही है। संत पापा ने समझाया कि यह स्थिति विरोध प्रदर्शनों को भड़का रही है और उनके साथ मुश्किलें भी पैदा कर रही हैं, जिसमें फ्लोटिल्ला के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं इसे सिर्फ एक आमंत्रण के तौर पर नहीं बल्कि सच में एक अपील के तौर पर दोहराना चाहता हूँ और सभी अधिकारियों से गाजा के लोगों की मदद करने और उनके पास जाने और फिर से बनाने का काम शुरू करने में मदद करने की गुजारिश करता हूँ। जब पूछा गया कि बिना हथियार वाले शांति कार्यकर्ताओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है तो इसका क्या मतलब होता है, संत पापा लियो ने और नफरत को बढ़ावा देने के खतरे के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हम और ज्यादा नफरत भड़का रहे हैं और कहा कि हिंसा से कोई मदद नहीं मिलती, किसी भी तरफ से नहीं। इसके बजाय संत पापा ने हमेशा सभी के मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए बातचीत पर लौटने और बातचीत के जरिए समस्याओं का हल करने की जरूरत पर जोर दिया। लेबनान समेत हाल के झगड़ों का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि आज
मानव जीवन के बारे में सोचे बिना एआई से जंग लड़ी जा रही है, जो असल में इन सब का शिकार हैं। इसे ध्यान में रखते हुए संत पापा ने शांति के लिए अपनी अपील दोहराई, जिसे उन्होंने निहत्था कृत्रिम बुद्धिमता बताया और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत के बारे में बात की। उधर यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक कल दोपहर और आज सुबह के बीच एयर डिफेंस ने मास्को के लॉन्च किए गए 163 ड्रोन में से 150 को बेअसर कर दिया। दूसरे 8 ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किए जा सके और उन्होंने 7 अलग अलग जगहों पर हमला किया। सबसे ज्यादा असर चेरनीहाई इलाके पर पड़ा, जो बेलारूस और रूस के बॉर्डर पर है। अपनी तरफ से कीव ने क्रीमिया में सेवस्तोपोल पोर्ट पर हमला किया, जिसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया, जो फ्रैंको ब्रिटिश कंसोर्सियम की बनाई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं। शहर के गवर्नर मिखाइल के टेलीग्राम पर दिए गए एक बयान के अनुसार रूसी एयर डिफेंस ने 20 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। उन्होंने बताया कि शुरुआती डेटा के अनुसार कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर युद्ध विराम लागू होने के बावजूद इसराइल ने घोषणा की है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है, ताकि वह जिसे प्रतिरोधी जोन मानता है उसे मजबूत कर सके और इस तरह अपने देश के उत्तरी हिस्से की रक्षा कर सके। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 बच्चे, 3 महिलाएं और 1 बचावकर्मी शामिल है। गाजा में भी हमले फिर से शुरू हो गए। इस बीच गाजा शहर में कम 2 नए इजरायली सेना के हमले हुए हैं, खास तौर पर रिमल इलाके के खिलाफ, जिसमें हमास के हथियारबंद विंग के नए हेड मोहम्मद ओहेद मारे गए, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान पहले से ही इंटेलिजेंस के हेड थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। विश्व पत्र मीडिएटर देई में आराध्य संत पापा पियूस 12वें लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि कलीसिया एक जीवित इकाई है और इस सजीव इकाई स्वरूप पवित्र धर्म विधि के संदर्भ में भी वह विकसित होती, प्रौढ़ता को प्राप्त करती, प्रगति करते हुए समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेती है, बशर्ते धर्म विधि के धर्म सिद्धांत की देखरेख की जाती हो। इस सिद्धांत के पूर्ण अनुपालन में द्वितीय वैटिकन महासभा धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम के परिचय में इस बात का उल्लेख किया गया है, धर्म विधि में सुधार और उसे बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर ठोस कारणों का पहचान किया जाता है। वास्तव में धर्म सभा के अभियोजन का उद्देश्य विश्वासियों को ख्रिस्तीय जीवन जीने हेतु एक उत्साह प्रदान करना है, समय की मांग के अनुरूप संस्थानों में परिवर्तन पर ध्यान देना, उन बातों को बढ़ावा देना जो ख्रिस्तीय विश्वासियों में एकता की भावना को प्रोत्साहित करती हो तथा सारी मानव जाति को कलीसिया में संग्रहित करने वाली बातों को मजबूती प्रदान करना है। संत पापा लियो ने कहा कि इतिहास के उन क्षणों में धर्म विधि के क्रियाकलापों में नवीनीकरण लाने हेतु एक गहरी आवश्यकता की अनुभूति हुई, जिसके द्वारा सदियों तक कलीसिया ने ईश्वर की महिमा और ख्रिस्तियों के पवित्रीकरण हेतु कार्य किया। हम धर्म विधि के संबंध में हुए आंदोलनों के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिनके द्वारा विश्वास में सुदृढ़ता आई, जिनके संबंध में संत पापा द्वितीय ने बाद में कहा कि धर्म विधि और कलीसियाई जीवन के नवीनीकरण के बीच एक अति घनिष्ठ और मूलभूत संबंध है। कलीसिया पूजन विधि में न केवल कार्य करती है बल्कि उसके द्वारा खुद को भी प्रकट करती है। वह पूजन विधि के द्वारा जीवित रहती और अपने जीवन के लिए शक्ति हासिल करती है। संत पापा लियो ने कहा कि विश्वासियों को धर्म विधि में मिलने वाले समृद्ध कृपा दानों की ओर अभिमुख करने हेतु धर्म सिद्धांत साक्रो कॉन्सिलियम एक प्रभावकारी वाक्यांश कहता है,
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: अच्छी परंपरा को बनाए रखा जाए यद्यपि उसमें संवैधानिक विकास का मार्ग खुला रहे। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इस घोषणा में निहित उद्देश्य को समझा जो धर्म सभा के आचार्यों में नवीनता हेतु कार्यक्रम को व्यक्त करता है। परंपरा से चली आ रही वृहद धर्म विधि और भविष्य की धर्म विधि के मध्य एक संतुलन, इस बात का ध्यान रखते हुए कि परंपरा और प्रगति बहुधा बेढंगे रूप में विरोधात्मक होते हैं, जबकि वास्तव में दो तथ्यों का मिलन होता है। परंपरा अपने में एक सजीव सच्चाई है जो अपने में विकास के सिद्धांत को वहन करती है। यह मानो यह कहने की भांति है कि परंपरा की नदी स्वयं में स्रोत को वहन करती और अपने में बाहर की ओर बहती है। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सभा इस प्रगति की वैधता को सुदृढ़ता प्रदान करती है जो वास्तविक परंपरा में जुड़ी हुई है। पूजन विधि में ईश्वर द्वारा स्थापित अपरिवर्तनीय तत्वों और परिवर्तनशील तत्वों में अंतर करते हुए, जो समय के साथ न केवल बदले जा सकते हैं बल्कि बदले भी जाने चाहिए, अगर उनमें किसी ऐसी चीज का प्रवेश हो गया है जो पूजन विधि के अंदरूनी स्वभाव से मेल नहीं खाती या उसके लिए अनुपयुक्त हो गई है। इस तरह के परिवर्तनों को सदियों में निरंतर देखा गया है, जिनके द्वारा विश्वासियों की सहभागिता धार्मिक क्रियाकलापों में ख्रीस्त के पास का रहस्य में फलदायक बन सके, जो ख्रीस्तीय विश्वास का मूलभूत आधार है। कलीसिया की आराधना इस भांति हर युग के सांस्कृतिक स्वरूपों को अपने में वहन करती है और उन्हें प्रभावित करते हुए उन्हें परिवर्तित भी करती है। इस तरह धर्म विधि सदियों से हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करने का एक साधन बनता है। आज हमारे लिए इस शक्ति को वर्तमान सच्चाई और सजीव कैथोलिक परंपरा के अनुरूप नवीन बनाने की जरूरत है, अर्थात इस आयाम के संग जो विश्वासियों को पूर्ण सत्य की खोज हेतु प्रेरित करता है। संत पापा ने कहा, अतः हम इस बात को समझते हैं कि क्यों धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के पुनरालोकन की बात कही, जब सच्ची कलीसिया की भलाई हेतु उसकी जरूरत निश्चित रूप में होती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनाया गया कोई भी नया रूप किसी न किसी तरह से पहले से मौजूद रूपों में स्वाभाविक रूप से विकसित होती हो। संपूर्ण कलीसिया की भलाई हेतु हर नवनीकरण को चाहिए कि वह सदैव सावधानी पूर्वक ईश शास्त्रीय इतिहास और प्रेरिताई की खोज करे। धर्म सभा का धर्म सिद्धांत इस भांति हमें विश्वासियों के बीच भ्रम को दूर करने की बात कहता है। यह हर किसी को सम्माहित करने हेतु प्रोत्साहित नहीं करता, धर्म विधि के संबंध में उन बातों को हटाने या बदलने की बात कहता है जो व्यक्तिगत पहल से शुरू की गई है। धर्म सिद्धांत में प्रगति कलीसिया की एकता से कोई समझौता नहीं करना है, बल्कि यह उसे सुदृढ़ करने और उसे बढ़ावा देने की कोशिश करना है। संत पापा ने कहा,
2: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli
1: ordinamenti. अतः मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ जो दिव्य रहस्य का समारोह मनाने की तैयारी करते हैं, विशेषकर पुरोहितों के लिए जो धर्म विधि की अगुवाई करते हैं, पूजन विधि के पाठ और नियमों के प्रति हमेशा सम्मान को बनाए रखें, जो आंतरिक खुलेपन और ईश्वर पर भरोसा से उत्पन्न होते हैं, जिनमें हम ईश्वर की महानता के सामने विनम्रता और कलीसिया के प्रति सच्ची निष्ठा को व्यक्त करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित यात्रा से दो हफ्ते से भी कम समय पहले आज बुधवारीय आम दर्शन समारोह से पहले संत पापा ने वाटिकन में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेजोन से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघर से भी मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार वाटिकन सचिवालय में हुई बातचीत में संत पापा की आने वाली यात्रा पर खुशी जताई गई और इसे परम धर्म पीठ और स्पेन के बीच अच्छे रिश्तों की निशानी बताया गया। और बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेन पर रूस के हाल के हमलों के बाद शांति की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती, इससे वे और बिगड़ जाती हैं, क्योंकि जहां भी मिसाइलें और ड्रोन गिरते हैं वहां उम्मीद भी टूट जाती है, घर और पूजा के स्थान तबाह हो जाते हैं और बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। संत पापा ने युद्ध में घायल सभी लोगों को शांति की रानी कुंवारी माँ मरियम की सुरक्षा में सौंप दिया। इसके बाद संत पापा ने अरबी और फ्रेंच बोलने वाले श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए लेबनानी तीर्थयात्रियों को भी खास शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारी माँ मरिया हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे लिए प्रार्थना करती हैं और माँ के प्यार से देखभाल करती हैं। संत पापा ने कहा, प्रभु आपको आशीर्वाद दें और हमेशा हर बुराई से बचाएं। सभी माताओं को धन्यवाद अपने बच्चों को ईश्वर से प्यार करना सिखाने के लिए। अंत में पोलिश तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने माताओं को धन्यवाद दिया और उन्होंने याद किया कि पोलैंड ने कल माताओं का दिवस मनाया था। उन्होंने कहा, मैं उन सभी माताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उदारता से अपने बच्चों को जीवन और देखभाल का तोहफा दिया है, उन्हें ईश्वर और अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाया है। संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर की माँ मरियम उनके लिए बीच बचाव करें ताकि उन्हें यीशु के साथ एक स्थायी बंधन की कृपा मिल सके। संत पापा ने पोलैंड के लोगों से अपने देश में गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया। और मंगलवार शाम को कास्टेल गंडोल्फो के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए अपनी अपील दोहराई। युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी जो इंसानी जिंदगी की परवाह नहीं करता और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के साथ चल रही बातचीत पर जोर दिया। गाजा जाने वाले ग्लोबल समुद्र फ्लोटिल्ला में शामिल कार्यकर्ताओं के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए जिनमें से कुछ को हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधने की खबरें थी, संत पापा ने कहा कि हमें हर व्यक्ति के मानव अधिकार के सम्मान के लिए अपनी अपील फिर से दोहरानी चाहिए। संत पापा ने गाजा में आम लोगों की लगातार तकलीफ पर दुख जताया और कहा, दुर्भाग्य से गाजा के लोगों को अभी भी मानवीय मदद नहीं मिल रही है। संत पापा ने समझाया कि यह स्थिति विरोध प्रदर्शनों को भड़का रही है और उनके साथ मुश्किलें भी पैदा कर रही हैं, जिसमें फ्लोटिल्ला के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं इसे सिर्फ एक आमंत्रण के तौर पर नहीं बल्कि सच में एक अपील के तौर पर दोहराना चाहता हूँ और सभी अधिकारियों से गाजा के लोगों की मदद करने और उनके पास जाने और फिर से बनाने का काम शुरू करने में मदद करने की गुजारिश करता हूँ। जब पूछा गया कि बिना हथियार वाले शांति कार्यकर्ताओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है तो इसका क्या मतलब होता है, संत पापा लियो ने और नफरत को बढ़ावा देने के खतरे के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हम और ज्यादा नफरत भड़का रहे हैं और कहा कि हिंसा से कोई मदद नहीं मिलती, किसी भी तरफ से नहीं। इसके बजाय संत पापा ने हमेशा सभी के मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए बातचीत पर लौटने और बातचीत के जरिए समस्याओं का हल करने की जरूरत पर जोर दिया। लेबनान समेत हाल के झगड़ों का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि आज
मानव जीवन के बारे में सोचे बिना एआई से जंग लड़ी जा रही है, जो असल में इन सब का शिकार है। इसे ध्यान में रखते हुए संत पापा ने शांति के लिए अपनी अपील दोहराई, जिसे उन्होंने निहत्था कृत्रिम बुद्धिमता बताया और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत के बारे में बात की। उधर यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक कल दोपहर और आज सुबह के बीच एयर डिफेंस ने मास्को के लॉन्च किए गए 163 ड्रोन में से 150 को बेअसर कर दिया। दूसरे 8 ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किए जा सके और उन्होंने 7 अलग अलग जगहों पर हमला किया। सबसे ज्यादा असर चेर्निहाइव इलाके पर पड़ा, जो बेलारूस और रूस के बॉर्डर पर है। अपनी तरफ से कीव ने क्रीमिया में सेवस्तोपोल पोर्ट पर हमला किया, जिसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया, जो फ्रैंको ब्रिटिश कंसोर्सियम की बनाई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं। शहर के गवर्नर मिखाइल के टेलीग्राम पर दिए गए एक बयान के अनुसार रूसी एयर डिफेंस ने 20 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। उन्होंने बताया कि शुरुआती डेटा के अनुसार कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर युद्ध विराम लागू होने के बावजूद इसराइल ने घोषणा की है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है, ताकि वह जिसे प्रतिरोधी जोन मानता है उसे मजबूत कर सके और इस तरह अपने देश के उत्तरी हिस्से की रक्षा कर सके। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 बच्चे, 3 महिलाएं और 1 बचाव कर्मी शामिल है। गाजा में भी हमले फिर से शुरू हो गए। इस बीच गाजा शहर में कम से कम 2 नए इजरायली सेना के हमले हुए हैं, खास तौर पर रिमल इलाके के खिलाफ, जिसमें हमास के हथियारबंद विंग के नए हेड मोहम्मद ओहेद मारे गए, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान पहले से ही इंटेलिजेंस के हेड थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।